0: Sunrise Retro, London का Retro Asian Mix.
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है.

0: This is Sunrise Retro.
1: ये है Sunrise Retro.
2: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए?

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: तू आ आ
1: जा जा घर तू जा जा
0: अरे आ आ इधर तू आ आ
1: है जा जा घर तू जा जा
2: Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.